0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ
1: सत श्री अकाल नमस्कार आदाब।
2: Forget coffee, chai. He has got your morning kick. UAE's number one way to rise and shine. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. Brought to you by Fly Dubai. And Jetour UAE, part of Elite Group Holding.
3: Good morning, it's past 6 a.m. ईद की छुट्टियों का आखिरी दिन. नहीं, मतलब जो वीकडे वाली छुट्टियां हैं उनका आखिरी दिन. वीकेंड तो पूरा का पूरा बचा हुआ है. It is a Friday morning. How are you feeling? अभी तक, how is this लंबी चौड़ी ईद की छुट्टी gone? If you have something to share, give me a call 800-1062. But this is the perfect way to start your day. It's called The Big Breakfast with me, Sid, right here on Big 106.2, a part of the Fun Asia.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

होगा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रेयान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

काम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: عدد ما بالشريف هو خير، فالشرف الصيف نكبه نبنى سرعا بي تو دیکھے کہ ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا.
1: Big 106.2 The beat of Bollywood. Again? The car's not starting.
2: I think the battery's gone.
1: Then stop guessing. Get Solite batteries.
2: What's special?
1: Premium Korean tech. Zero maintenance. Perfect for this heat.
2: Wow, that's smooth. Where do I find it?
1: Auto Pro Fast Track Dialer Battery Auto Studio. Any major auto store. Solite batteries. Power you can trust. Distributed by AMAP Group.
3: Markets don't sleep. So why should you? Introducing Trade 24/7, the modern way to trade global markets anytime, anywhere. From precious metals and commodities to global indices, all in one powerful platform. With instant deposits and withdrawals, your money moves as fast as you do, backed by Acuity-powered signals. So you're always one step ahead of the market. Trade 24/7. Trade smarter, trade better.
4: Hi, I'm Neha. Honestly, मुझे ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करने में हमेशा थोड़ी हेजिटेशन होती है. मेरा कंसर्न था क्या मुझे करेक्ट वैल्यू मिलेगा, कहीं हिडन डिडक्शंस तो नहीं होंगे. मैंने तनिष्क ट्राई किया, प्योरिटी चेक हुई एंड एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड. नो हिडन चार्जेस, नो लास्ट मिनट सरप्राइजेस. आई गॉट 20 दिरहम्स एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज ऑफ माई ओल्ड गोल्ड. और मैंने अपने लिए ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी भी खरीदी.
5: विजिट योर नियरेस्ट तनिष्क स्टोर टुडे.
6: दुबई, गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट पंजाबी एंटरटेनमेंट नाइट ऑफ द ईयर. हम्बल मोशन पिक्चर्स प्रेजेंट्स कैरी ऑन जट्टा 4. मीट द स्टार कास्ट ऑफ द हाईली एंटिसिपेटेड फैमिली कॉमेडी कैरी ऑन जट्टा 4, फीचरिंग गिप्पी ग्रेवाल, सरगुन मेहता, बिनू टिल्लों एंड करमजीत अनमोल. लाइव इन दुबई ऑन 29th मई. कैच देम एट ग्लोबल विलेज मेन स्टेज फ्रॉम 7 PM onwards and join the exclusive after party at Opus Club Dubai from 11 PM onwards. Powered by Royal Skin Cosmetic Clinic, Celebrity Nation, Ladies Fusion and Big 106.2. Tour organized by Dream Advertising and Big Bash Squad.
7: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Morning शुरुआत करते हैं अबू धाबी कैपिटल से. थोड़ा बहुत ट्रैफिक का बिल्डअप होना शुरू हो गया E30 मुसफा इंडस्ट्रियल पर, एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स रबदान. एंड रबदान में भी आपको 2-3 मिनट की देर मिलने वाली है. सेक्टर 13 खलीफा सिटी इज ऑल्सो गेटिंग जस्ट अ बिट बिजी. इन केस यू स्पॉट समथिंग, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा तो आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा,
2: आ रहा है। देखिए,
0: ये गुस्सा नहीं है।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Dubai, get ready for the biggest Punjabi entertainment night of the year. Humble Motion Pictures presents Carry On Jatta 4. Meet the star cast of the highly anticipated family comedy Carry On Jatta 4, featuring Gippy Garewal, Sargun Mehta, Binu Tillon, and Karamjeet Anmol, live in Dubai on 29th May. Catch them at Global Village main stage from 7 PM onwards and join the exclusive after party at Opus Club Dubai from 11 PM onwards. Powered by Royal Skin Cosmetic Clinic, Celebrity Nation, Ladies Fusion and Big 106.2. Tour organized by Dream Advertising and Big Bash Squad.
3: Hi, I'm Neha. Honestly, मुझे old gold exchange करने में हमेशा थोड़ी hesitation होती है. मेरा concern था, क्या मुझे correct value मिलेगा? कहीं hidden deductions तो नहीं होंगे? मैंने Tanishq try किया. Purity check हुई and everything was explained. No hidden charges, no last minute surprises. I got 20 dirhams extra per gram on exchange of my old gold. Aur maine apne liye beautiful diamond jewelry bhi khareedi.
4: Visit your nearest Tanishq store today.
5: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
6: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: Big 106.2. That's My Song by E-And.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: हाँ जी, फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द ईयर आपने सुना ऑन द बिग मिक्स विद मी ज़ोहरा. एंड इफ यू आर लुकिंग टू रेंट कार्स इन द यूएई, द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू एंड द मोस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशन फॉर यू हैज गॉट टू बी selfdrive.ae. यार, द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल एट जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ. नो ओनरशिप, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड नो स्ट्रेस. सो यू गॉट टू पिक योर कार अप एंड ड्राइव, दैट्स ऑल यू गॉट टू डू. सर्च selfdrive.ae या फिर डाउनलोड कीजिए ऐप को. सेल्फ ड्राइव, योर कार, योर प्राइस, योर वे.

0: खुल्ला हुआ के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: Dubai. Get ready for the biggest Punjabi entertainment night of the year. Humble Motion Pictures presents Carry On Jatta 4. Meet the star cast of the highly anticipated family comedy Carry On Jatta 4 featuring Gippy Grewal, Sargun Mehta, Binu Tillon and Karamjeet Anmol live in Dubai on 29th May. Catch them at Global Village main stage from 7 p.m. onwards and join the exclusive after party at Opus Club Dubai from 11 p.m. onwards. Powered by Royal Skin Cosmetic Clinic, Celebrity Nation, Ladies Fusion and Big 106.2. Tour organized by Dream Advertising and Big Bash Squad.
3: Hi, I'm Neha. Honestly, मुझे old gold exchange करने में हमेशा थोड़ी hesitation होती है. मेरा concern था, क्या मुझे correct value मिलेगा? कहीं hidden deductions तो नहीं होंगे? मैंने Tanishq try किया. Purity check हुई and everything was explained. No hidden charges, no last minute surprises. I got 20 dirhams extra per gram on exchange of my old gold. Aur maine apne liye beautiful diamond jewelry bhi khareedi.
4: Visit your nearest Tanishq store today.
5: Hey, jaldi hata tera khadana. Chal hata. Are jaldi hata.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: हाँ जी, ट्रैफिक का हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड लाइट ट्रैफिक, स्पेशली अगर आप वर्का 1 के पास है 2 से 3 मिनट का डिले. D83 रिपर्ट स्ट्रीट फेस्टिवल सिटी के पास भी लाइट ट्रैफिक है, 5 मिनट का वहां पर डिले. D85 बनिया स्ट्रीट, वहां पे थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आपको मिल जाएगा. अनदर 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड. एंड E11 शेख जायद रोड ट्रेड सेंटर 1 के पास भी पैची ट्रैफिक है जस्ट फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स. एनी अदर अपडेट लेट अस नो 4305 पे.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

मोहित चौहान की आवाज तुम हो, बहुत ही प्यारा गाना ऑन द बिग मिक्स. वी आर हेडिंग इनटू द सेकंड आवर ऑफ द शो. ऐसे ही प्यारे गाने आपके लिए चलते रहेंगे. व्हाटएवर दैट मूड इज दैट यू आर इन, अगर फ्राइडे आपका दिल कर रहा है कि आई एम अ लिटिल सैड दैट इट्स ऑलमोस्ट ओवर, इट्स नॉट येट ओवर, ऑलमोस्ट ओवर, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वॉन्ट टू बी दैट सैड, तो उस मूड वाले गाने भी चलेंगे. और इफ़ यू फील लाइक सैटरडे आपके बहुत बड़े सही प्लान बने हुए हैं, देन वील मेक श्योर दैट द पार्टी मूड इज ऑल्सो ऑन. बेसिकली सॉन्ग्स टू फिट ईच एंड एवरी मूड ऑफ योर्स राइट हियर ऑन द बिग मिक्स विद मी ज़ोहरा. आई विल कीप यू कंपनी अंटिल 1.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए GoChat Coins. इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए. GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: होली होली की देवी।

0: brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Big Traffic, brought to you by SelfDrive.ae.
1: हाँ जी, ट्रैफिक का हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड लाइट ट्रैफिक, स्पेशली अगर आप वर्का 1 के पास है 2 से 3 मिनट का डिले। D83 रिपर्ट स्ट्रीट फेस्टिवल सिटी के पास भी लाइट ट्रैफिक है, 5 मिनट का वहाँ पर डिले। D85 बनिया स्ट्रीट, वहाँ पे थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आपको मिल जाएगा, अनदर 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड। एंड E11 शेख ज़ायद रोड ट्रेड सेंटर 1 के पास भी पैची ट्रैफिक है जस्ट फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। एनी अदर अपडेट लेट अस नो 4305 पे।
0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
1: BBC News with Moira Alderson. Australia is suing the US firm 3M over the use of forever chemicals which don't naturally break down in firefighting foam used on military bases. Large quantities of soil have been contaminated. As Bolivia continues to be rocked by anti-government protests, the veteran former president, Evo Morales, said people are rebelling against a government that's utterly submissive to the US. The current president, Rodrigo Paz, has warned that blockades made by protesters have left Bolivia at breaking point. A verdict is due shortly in the trial of an Austrian man who's admitted plotting a jihadist attack on a Taylor Swift concert in Vienna 2 years ago. The man, named as Beran A, also pleaded guilty to being part of a terrorist organisation but denied other charges. That's the latest world news from the BBC.
0: Fan Network News from the BBC. Henna Speedy Hair Colour. Your quick fix solution for changing back the lost colours of your hair in just 7 minutes. Big 106.2.
2: जब वो चले तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बीत जाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा I love you.
0: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: हाँ जी, गुड आफ्टरनून. जोहरा के साथ हो आप ऑन द बिग मिक्स. आई कीप यू कंपनी फॉर वन मोर आवर अंटिल वन राइट हियर ऑन बिग 106.2. वी आर पार्ट ऑफ फनीशिया नेटवर्क. इस घंटे मुझे बात करनी है अबाउट द अनकन्वेंशनल थिंग्स दैट पीपल वुड डू ऑन अ लॉन्ग वीकेंड और दैट पीपल वुड डू इन जनरल ओवर हियर. आई डोंट थिंक जिस चीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उस कैटेगरी में ज्यादा लोग यहाँ पर है, एटलीस्ट इन द रीजन. मैंने बहुत कम ऐसे लोगों को देखा है क्योंकि यहाँ के लोगों में मतलब पेशेंस नहीं है. एवरी वन इज ऑलवेज ऑन द मूव, ऑलवेज इन अ हरी, ऑलवेज इन अ रश टू डू समथिंग, to achieve something, to get somewhere. So I feel like anything slow, anything too, you know, calming, logon ko jamta hi nahi hai. To iske baare mein baat karenge is ghante Zohra ke saath until one on the Big Mix.

0: विशाल ददलानी की आवाज, खुड़ी नू नचने दे। ऑफ कोर्स यार, नाचने दो यार, मतलब क्या है इस टाइम पे भी अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो लॉन्ग वीकेंड का फायदा ही क्या हुआ। मतलब
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: लेट पीपल डू व्हाट दे लाइक टू डू, मतलब जज करना बंद करो, क्रिटिसाइज करना बंद करो, एंड मे बी यू आर ओके विथ यू नो कॉन्स्टेंटली बींग ऑन द रन। सम पीपल जस्ट लाइक टू पॉज एंड टेक अ स्टेप बैक, टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक इन फैक्ट, एंड जस्ट डू समथिंग डी स्ट्रेसिंग, समथिंग एकदम कामिंग। जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग। सो दिस लॉन्ग वीकेंड आई डिसाइडेड टू रीड, तो देयर वर टू थ्री बुक्स जो मैंने खरीदे थे लास्ट ईयर, एंड वो ऐसे ही मेरे शेल्फ पे पड़े हुए हैं, मतलब धूल जमे जा रही हूँ उन पे, एंड मैंने टच भी नहीं किए वो बुक्स। दिस लॉन्ग वीकेंड आई डिसाइडेड, बिकॉज आई एम नॉट ट्रैवलिंग, कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, तो आई माइट एज वेल फिनिश माय यू नो बैकलॉग ऑफ यू नो रीडिंग दैट आई हैव गॉट टू डू, ऑल द बुक्स जो मैं लेकर आई हूँ जिसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। और अब तो उन बुक्स के ऊपर मूवीज भी बनने लगी हैं, इससे पहले वो मूवी बन जाए मुझे वो बुक खत्म करनी जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास बुक्स थे, एंड आई थॉट लाइक बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे रीडिंग एंजॉय करते हैं, बिकॉज आई स्पोक टू टू थ्री पीपल एंड आई टोल्ड देम कि हाँ लॉन्ग वीकेंड आई थिंक आई एम जस्ट गोना सिट एंड रीड अ बुक, एंड दे वर लाइक रीड अ बुक, वो कौन करता है, रीडिंग कौन करता है। आजकल रीडिंग के ऊपर पे भी मुंह बन जाता है लोगों का कि व्हाट इज दैट, हु डज दैट। आजकल की जनरेशन को रीडिंग का इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है। एनी वे, दैट इज अ होल अदर डिबेट दैट आई विल गेट इन टू, बट आई फील लाइक देर आर लॉट ऑफ पीपल हु एंजॉय डूइंग दीज यू नो कामिंग थिंग्स। जैसे रीडिंग इज अ वेरी स्लो थिंग, राइट, जल्दी जल्दी में नहीं कर सकते आप, आराम आराम से करना होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग आराम आराम से करना पसंद करते हैं, अनलाइक यू नो द यूजुअल पीपल, जहाँ पे यहाँ पे जो लोग हैं हु ऑलवेज लाइक यू नो डूइंग फास्ट पेस थिंग्स, जल्दी जल्दी में करेंगे, जल्दी जल्दी वहाँ जाएंगे, जल्दी से वहाँ आएंगे। तो अनलाइक दैट एंड कॉन्ट्ररी टू दैट, सम पीपल लाइक डूइंग द यू नो स्लोअर थिंग्स। आर यू वन ऑफ दोज पीपल इज माई क्वेश्चन, कि आपको भी ऐसी स्लो पेस चीज़ें कभी कभी यू नो फॉर अ चेंज अच्छा लगता है करना, या फिर यू आर समवन जिसमें पेशेंस है ही नहीं, एंड यू गॉट टू डू समथिंग दैट इज क्विक and that'll be over soon. Which kind of person are you? Let me know, 800-1062 or drop me a message 4305 pe.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: In this game, every run counts, and that's a single for this game of the Tata IPL. Victories are built one run at a time. The One Run
2: with Daniel Properties.
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
5: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
6: ये है ज़ोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Dubai, get ready for the biggest Punjabi entertainment night of the year. Humble Motion Pictures presents Carry On Jatta 4. Meet the star cast of the highly anticipated family comedy Carry On Jatta 4, featuring Gippy Grewal, Sargun Mehta, Binu Tillon, and Karamjeet Anmol, live in Dubai on 29th May. Catch them at Global Village main stage from 7 PM onwards and join the exclusive after party at Opus Club Dubai from 11 PM onwards. Powered by Royal Skin Cosmetic Clinic, Celebrity Nation, Ladies Fusion and Big 106.2. Tour organized by Dream Advertising and Big Bash Squad.
3: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: हाँ जी, ट्रैफिक का हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड लाइट ट्रैफिक, स्पेशली अगर आप वर्का 1 के पास है 2 से 3 मिनट का डिले। D83 रिपर्ट स्ट्रीट फेस्टिवल सिटी के पास भी लाइट ट्रैफिक है, 5 मिनट का वहाँ पर डिले। D85 बनियास स्ट्रीट, वहाँ पे थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आपको मिल जाएगा, अनदर 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड। एंड E11 शेख ज़ायद रोड ट्रेड सेंटर 1 के पास भी पैची ट्रैफिक है जस्ट फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। एनी अदर अपडेट लेट अस नो 4305 पे।
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

0: Call or WhatsApp 800-ALFRED. Renewing your registration? Don't forget your insurance first. InsuranceMarket.ae.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: एंड विद दैट इट्स ऑलमोस्ट माय टाइम टू टेक योर लीव. एक बजने को आए हैं, उज्जवल को सौंप दूंगी ये स्टूडियो ताकि वो आपका ख्याल रखे आने वाले कुछ घंटों के लिए विद द बिग लाइफ. मेरी आवाज मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, माय हैंडल ऑन इंस्टाग्राम इज ज़ोहरा अमीन, डोंट फॉरगेट टू गो फॉलो मी देयर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 106.2 बिग FM हमारा इंस्टा पे पेज है, वहां पे तो डेफिनेटली जाके फॉलो करो यार. इतना बढ़िया बढ़िया फन कॉन्टेंट वहां पे देखने को मिलता है, अ साइड ऑफ अस प्रेजेंटर्स दैट यू प्रोबेबली वुडंट हैव इमेजिनड हमारी आवाज सुन के. सो डू गो फॉलो अस ओवर देयर. I will now see you on a Monday morning, 10 se 1 ke beech on the Big Mix. Until then, stay blessed and stay tuned to Big 106.2, the beat of Bollywood.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। बिग 106.2

0: 93.2 The Beat of Bollywood. Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
1: BBC News with Moira Alderson. Australia is suing the US firm 3M over the use of forever chemicals which don't naturally break down in firefighting foam used on military bases. Large quantities of soil have been contaminated. As Bolivia continues to be rocked by anti-government protests, the veteran former president, Evo Morales, said people are rebelling against a government that's utterly submissive to the US. The current president, Rodrigo Paz, has warned that blockades made by protesters have left Bolivia at breaking point. A verdict is due shortly in the trial of an Austrian man who's admitted plotting a jihadist attack on a Taylor Swift concert in Vienna 2 years ago. The man, named as Beran A, also pleaded guilty to being part of a terrorist organisation but denied other charges. That's the latest world news from the BBC.
0: Fan Network News from the BBC. Henna Speedy Hair Colour. Your quick fix solution for changing back the lost colours of your hair in just 7 minutes. Big 106.2.
2: कहाँ से शुरू करूँ? एक जैसा मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं. कभी वो मासूम है, तो कभी शैतान.
0: When the afternoon slows down, he speaks of love, life and light. The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: Hello, hi, happy Friday. Happy Friday कहूँ या फिर बोलूँ कि खत्म हो गया ये लंबा ब्रेक. दिल के अरमासों में बह गए. बस भी करो यार, मतलब सेटिस्फैक्शन भी इंसान की बनाई हुई चीज़ है ना. संतुष्ट हो जाओ. हो गई ना इतनी लंबी छुट्टी, इंसान भी पक जाता है कि अब चलो काम पे वापस लौटते हैं. बट अच्छी चीज़ ये है कि अच्छा चार्ज मिल गया है हमें ना. दैट लिटिल ब्रेक दैट वी रिक्वायर्ड, इट्स नॉट इवन अ लिटिल ब्रेक. ऐसी जो छुट्टियां हैं इसका जो स्पेक्ट्रम है किसी भी देश में मिलता नहीं है जितना यहाँ पे मिलता है ना. 6-6, 7-7, 8-8 दिन की छुट्टियों का पैकेज आपको मिलता है. सो आई होप दैट यू मेड यूज ऑफ इट. आज की छुट्टी एंड सैटरडे संडे तो है ही है, वो तो निकल जाएगा फटाफट. एंड मंडे बैक इन एक्शन. वेल दिस इज बिग 106.2 उज्जवल खन्ना के साथ. वी आर पार्ट ऑफ फन एशियन नेटवर्क. हमारी छुट्टी नहीं है, हमारा काम चल रहा है आपके साथ. And of course, the afternoon time, the afternoon banter continues. Of course, ये last 2-3 दिन ये IPL के सारे fans के लिए बहुत important है. What is unfolding? I'll let you know in just some time. Let's get started with Reet Zara से Arijit Singh की आवाज, couple of hours, nice and easy music. मेरे यानी उज्जवल खन्ना के साथ.

0: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ. गुड आफ्टरनून टू यू.
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: वेल, लेजीनेस की दुकान के चलते एक पार्टी तो हिंदुस्तान में लॉन्च हो गई है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में लेजीनेस मंजूर नहीं है, जिसमें से जो एक नाम आता है वो आता है साक्षात आपके सामने, जिसका नाम है जापान. लेजीनेस इज कंसिडर्ड अ डिजीज वहाँ पे, और 7 मेथड से इसको सही किया जाता है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप भी शायद इसको इम्प्लीमेंट कर ले. नंबर 1, काइजन. काइजन का मतलब है द 1 मिनट रूल. स्टार्ट सो स्मॉल कि जो आपका ब्रेन है उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाए. एक पुशअप, एक सेंटेंस, एक मिनट. हार्वर्ड का रिसर्च है कि छोटी छोटी जो आदतें हैं वो बाईपास करते हैं आपका मेंटल रेजिस्टेंस को और कंपाउंड करती हैं ओवर टाइम, और प्रोग्रेस जो है वो बीट करता है प्रेशर को. नंबर 2 पे इकिगाई, विच इज बेसिकली द रीजन टू वेक अप. क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या करना है, व्हाट डू यू डू, क्वेश्चन इज व्हाई डू यू गेट अप. स्टडीज ऑन पर्पस एंड लॉन्जेविटी शो दैट meaning increases energy and discipline. When you know why is clear, effort feels higher. Number 3, hara hachibu. Iska matlab stop at 80%. Overeating kills focus. 80% aapko lagta hai aapne khana kha liya, wahin pe ruk jao. आपका जो मूड है, आपका जो ड्राइव है, वो ऑटोमेटिकली सेट होगा. तो जापानीज एल्डर्स हैं, वो इसलिए एक्टिव रहते हैं बिकॉज दे स्टॉप बिफोर बीइंग फुल. लाइटर डाइजेशन होती है is equals to better energy and mental clarity. Most laziness is physical overload. Number 4, anchored focus. Jo ritualized process hai. 25 minute ka kaam, 5 minute ka rest, add a ritual jisme ek saans, ek gesture ya phir ek sound. Aapka jo dimag hai wo learn karta hai signal, jiska tatparya hai focus karna. Neurosciences isko mante hain the conditioning and it works really fast. And number 5 pe hai Siri and Seaton, which means clear space. A messy room creates mental noise. Clutter increases stress and reduces all the effort. इसलिए आपके जो आसपास के जो स्पेस हैं उसको एकदम साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, और उसी से आपका जो एक्शन होगा वो एकदम क्लीन होगा. ओके, सो थिंक अबाउट इट इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट ऑल दीज थिंग्स. मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है. जैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे वैसे ही ब्रेन ऑटोमेटिकली ट्रेन होगा. Course by course, course correction is what they say. But rahiye mere saath when I say things during the afternoon time. Aap sun rahe hain The Big Life, Big 106.2 pe. We are part of Fun Asia Network.
1: Big 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं, आप सुन रहे हैं द बिग लाइव। वेल, आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप हंस हंस के यू नो यू फील लाइक ओ माय गॉड, अलग ही पंजाबी माहौल है। कैरी ऑन जट्टा दे नाल, वन तुसी देखिए, टू तुसी देखिए, थ्री तुसी देखिए, हुन जेड़ा फोर्थ एडिशन है ऑफ कैरी ऑन जट्टा दैट इज कमिंग सून। यस, एंड यू गेट रेडी टू मीट द ब्लॉकबस्टर स्टार ऑफ कैरी ऑन जट्टा Live in Dubai on 29th of May 2026. Gippy Grewal se aap mulaqat kar sakte hain, Sargun Mehta, Binu Tillo and Karamjeet Anmol. You can catch them live at Global Village main stage on 29th of May from 7 PM onwards. And jo celebration night continues with the official after party at Opus Club Dubai from 11 PM onwards. Event partners, Royal Skin Cosmetic Clinic, Celebrity Nation, Ladies Fusion, Cats Entertainment and Big 106.2. Tour organized by Dream Advertising and Big Squad, do not miss this madness.

0: ब्लॉकबस्टर एल्बम जब हैरी मेट सेजल, काश मैं ये फिल्म के बारे में भी बोल सकता। मेरे को लगता है इस समय तक सारी जो पब्लिक है, सारी जो ऑडियंस है, उनको अकल आ गई थी।
1: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: एटलीस्ट विद द स्क्रिप्ट सेंस कि बड़े एक्टर से पिक्चर नहीं चल सकती, फ्लैट हो सकती है पिक्चर। और ये ऐसे ही हुआ जब हैरी मेट सेजल के साथ इम्तियाज अली कहीं ना कहीं घूमते रहे ना विद लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, चाहे वो ये हो, चाहे इससे पहले जो जग्गा जासूस आई थी। जग्गा जासूस इम्तियाज अली ने बनाई थी? नॉट जग्गा जासूस, बट दूसरी फिल्म है जहाँ पर वो थोड़ा सा खो गए से, तमाशा टाइप की फिल्म है जो क्रिटिकली क्लेम थी, लेकिन कंफ्यूजन थी कि भाई व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। एनीवे, सो इम्तियाज अली, ही सेड इन एन इंटरव्यू दैट ही वाज आल्सो बिट सरप्राइज बाय द रिएक्शंस टू जब हैरी मेट सेजल। वो इसलिए भी बिकॉज बहुत ही स्टीरियोटिपिफिकेशन हो गए थे ऑफ दो कैरेक्टर्स, एक पंजाबी लड़की और एक गुजराती, नहीं पंजाबी नहीं, गुजराती लड़की एंड पंजाबी लड़का। अब आप इतना ज़्यादा एक्सेंट में काम करोगे तो पिक्चर वैसे भी फ्लैट हो जाएगी, कहानी कहीं और खो जाएगी, बिकॉज लोग उसी पे क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उसी को क्रिटिक करते रहेंगे। जस्ट हैव अ लिसन टू व्हाट ही वाज सेइंग।
2: आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड एज वेल, बट इट्स ऑल इन द गेम। मतलब यू ऑल यू कैन डू इज टू डेडिकेट फुल्ली टू व्हाट यू आर डूइंग, डू इट द बेस्ट वे एंड देन फॉरगेट अबाउट इट, मूव ऑन विद इट। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड फिल्म, बिकॉज आई एम, मुझे लगता है डायरेक्टर कौन होता है अपनी फिल्म पे जजमेंट देने वाला, उसका तो काम होता है सबसे अच्छे से बना देना। आई एम हैप्पी विद द वर्क दैट आई डिड एंड आई एम हैप्पी विद the experience, but it's okay, we'll live and learn.
0: Yes, and I hope that he's learned his lessons enough. Big film is coming out with Aang Raina, Sharvari, Diljit Dosanjh, Main Wapas Aunga. I hope Imtiaz makes a comeback and he definitely says, gets to say this, ki Main Wapas Aunga. Bahrhal, wapas aa raha hai gaana bahut time ke baad meri playlist mein. The track is called Preet, Jasleen Royal ke awaaz. Aapke saath until 3, aap sun rahe hain The Big Life, Big 106.2 pe. We are a part of Fun Asia Network.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: क्या गाना है यार, विशाल भारद्वाज का डायरेक्शन, उन्हीं की आवाज, रिटन बाय गुलजार साहब, शाहिद कपूर, प्रियंका चोपड़ा जोनस, बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ,
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको ट्रिविया बताता हूँ इस फिल्म का। रेडियो, आर यू रेडी, आर यू रेडी? सो द फन फैक्ट इज कि विशाल भारद्वाज को ये जो कमीने बनाने का जो आइडिया आया था वो आया था एक केनियन स्क्रिप्ट राइटर से। ये दो भाई थे, ये एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे वंस अपॉन अ टाइम इन नैरोबी, एंड वहाँ पे विशाल भारद्वाज भी मौजूद थे और उनको बहुत अच्छा लगा स्क्रिप्ट कि दो गरीब लड़के जो भाई हैं 24 घंटे के भीतर भीतर उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बीता वो उन्होंने उस स्क्रिप्ट पे लिखा था। एंड विशाल वाज रियली मैड एट द स्क्रिप्ट, लाइक वाओ, आई एम इन लव विद द स्क्रिप्ट बिकॉज इट वाज सिंपल कंटेन स्टोरी। उसके बाद विशाल भारद्वाज वापस इंडिया आ गए एंड ही केप्ट ऑन कॉन्टेम्पलेटिंग अबाउट द स्क्रिप्ट एंड ही अगेन वेंट टू नैरोबी। ही मेट विद दोस केनियन बॉयज, पेड देम $400 एंड ही बॉट द स्क्रिप्ट फ्रॉम देम। एंड देन इन्होंने अभिषेक चौबे के साथ मिलके कहा कि चलो अब हम इसको अपना बॉलीवुड एंगल देते हैं। उसमें बहुत सारा चेंज किया, ऑल्टर किया स्क्रिप्ट को और उसको बॉलीवुड पब्लिक के हिसाब से, अपने देसी ऑडियंस के हिसाब से बना दिया एंड हमारे सामने रख दिया। सो दिस इज वेयर ही गॉट द आइडिया ऑफ कमीने फ्रॉम एंड ऑफ कोर्स इट हैड शाहिद कपूर इन द लीड।
2: विशाल भारद्वाज, यस आई एम मोर एक्साइटेड देन ऑल ऑफ यू। इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग फिल्म और हम लोगों ने अभी कुछ 5-6 दिन शूटिंग की है, बट इट्स ऑलरेडी फीलिंग सो स्पेशल। Working with Vishal sir is always a learning experience and it's always a special experience and we want to give you more than what you're expecting and so it's great. I also got to shoot a couple of days with Tripti and it was really nice and it'll be nice to work with a new team. There is Vikrant Messi, there is Nana Patekar sir and there is a lot of other really, really fine actors. So it's going to be amazing. Randeep Hooda is there. How can I forget? Randeep is my buddy from his NSD days where I have also visited. So I'm very excited for the first time to be working with Randeep. But we've never worked together.
0: Well, the chemistry of Shahid and Vishal is also quite intimate. मतलब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिल्म में चली नहीं इन दोनों की। I really wanted the last film as well to work of Shahid and Vishal, but it was a flat bed at the box office. Do you remember the name of the film that I'm talking about? Think. I'll give you time. You can drop your answers on my Instagram. I'm by the name of M. George Wilkhanna, or you can drop it on our Instagram handle, Big's Instagram handle, that is 106.2 Big FM. Right now, fast track song of the hour brought to you by Self Drive from the film Highway. The track is Mahive Eha Rehman on this one.
1: Big 106.2, fast track song of the hour brought to you by selfdrive.ae.

0: मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा,
2: गुस्सा आ रहा है देखिए।
0: ये गुस्सा नहीं है।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई हो, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Dubai, get ready for the biggest Punjabi entertainment night of the year. Humble Motion Pictures presents Carry On Jatta 4. Meet the star cast of the highly anticipated family comedy Carry On Jatta 4, featuring Gippy Grewal, Sargun Mehta, Binu Tillon, and Karamjeet Anmol, live in Dubai on 29th May. Catch them at Global Village main stage from 7 p.m. onwards and join the exclusive after party at Opus Club Dubai from 11 p.m. onwards. Powered by Royal Skin Cosmetic Clinic, Celebrity Nation, Ladies Fusion and Big 106.2. Tour organized by Dream Advertising and Big Bash Squad.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
2: पैची ट्रैफिक इफ्रम द शेख मोहम्मद बिन जायद, अब 12 से 15 मिनट का डिले जो कुछ भी नहीं है. ट्रैफिक टुवर्ड्स ग्लोबल विलेज दो मूविंग अ बिट स्लो देन द यूजुअल. इनफैक्ट ग्लोबल विलेज का ये लास्ट वीक है बिफोर दे से बाय बाय टू अस फॉर दिस सीजन. सो या ग्रेट डील्स देयर. सो इफ पीपल आर हेडिंग देयर, आई नो द रीजन. ऑल्सो स्लो मूविंग ट्रैफिक अगर आप करामा मनकूल उद मेथा साइड है, इसके अलावा कहीं अटके हैं बता सकते हैं 800-1062 पर.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Brother.

मिलाने मिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ली? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: From Pati Patni aur Wo Do, what a brilliant gana. 8.1 rating mili hai ise IMDb pe. And I think comedy and Ayushman, they go hand in hand. Mudassar Aziz, Rakulpreet Singh, they team up after Mere Husband Ki Biwi, if you remember the movie. जो एक्चुअली बहुत लोगों ने नहीं देखी बट इट वॉज नॉट रियली बैड. भूमि पेडनेकर, अर्जुन एंड साथ में रकुल. इनफैक्ट ओरिजिनल लीड कास्ट फ्रॉम द प्रीक्वल पति पत्नी और वो जो 2019 में आई थी वॉज कम्प्लीटली रिप्लेस बाय द न्यू कास्ट इन दिस मूवी. एंड आयुष्मान एंड वमिका वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इनफैक्ट सारा एंड आयुष्मान लुक ग्रेट टुगेदर एंड पहली बार काम कर रहे हैं. सो आईड लाइक टू सी द बोथ ऑफ देम मोर ऑफन. ग्रेट म्यूजिक एंड माई प्लान इज टुमारो टू गो एंड वॉच पति पत्नी और वो दो. वट एवर योर प्लान इज डू कीप अस पोस्टेड. वुड लव टू रीपोस्ट योर स्टोरीज. सो अगर आप कुछ कर रहे हैं इस ईद पर, ड्राइव पे हैं, यू आर एंजॉइंग आवर म्यूजिक 106.2 बिग एफएम, दैट्स इंस्टा हैंडल, टैग अस.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is the Big Thrill and the summer is officially here, but there's plenty jo aap kar sakte hain over this weekend. I know aap Friday to ho hi gaya, Saturday, Sunday bhi aap ye kar sakte hain. Before they shut down for the season, you can head to the Dubai Miracle Garden. They are in Al Barsha South and subha 9 se raat 9 baje tak aap wahan ja sakte hain. The ticket prices are 100 dirhams per adult and children under 12 go free until the 31st of May. Iske alawa Global Village, I'm sure you're excited about it. Last hai, 31st ko last day hai Global Village ka is season ke liye. Tickets 25 dirhams a person. Subah 1 baje tak ye khula rahega, sham 4 baje se subah ke 1 baje tak. And aap apne tickets online bhi le sakte hain. Dubai Safari Park again closing on the 31st and it is at the Al Warqa Hatta Road. सुबह 9 से शाम 6 बजे एंड टिकट्स आर प्राइस 50 dirhams फॉर adults. एडिशनल पैकेजेस एंड सीजन passes आर also अवेलेबल. द दुबई गार्डन ग्लो 31st क्लोजिंग डेट. टिकट्स 73.5 dirhams विच इंक्लूड्स द डायनासोर पार्क एंड द फैंटेसी पार्क. जबील पार्क में लोकेटेड है एट गेट नंबर 3. सो ऑल ऑफ दिस बिफोर द सीजन एंड्स एंड ऑफ कोर्स बिफोर द लॉन्ग वीकेंड एंड्स आप ये कर सकते हैं. वैसे जो भी आप कर रहे हैं, डू लेट अस नो. वी'd लव टू रीपोस्ट योर स्टोरीज, व्हाटएवर यू आर डूइंग ओवर द लॉन्ग वीकेंड. गेट इन टच विद अस 106.2 Big FM. That's us on Instagram.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: An experience shaped around you with Fly Dubai. Different paths, different dreams, all shaped by the same moment. This is where every journey becomes a story worth telling. A story that begins with Fly Dubai.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
3: Hi, I'm Neha. Honestly, मुझे old gold exchange करने में हमेशा थोड़ी hesitation होती है. मेरा concern था, क्या मुझे correct value मिलेगा? कहीं hidden deductions तो नहीं होंगे? मैंने Tanishq try किया. Purity check हुई and everything was explained. No hidden charges, no last minute surprises. I got 20 dirhams extra per gram on exchange of my old gold. और मैंने अपने लिए beautiful diamond jewelry भी खरीदी.
4: Visit your nearest Tanishq store today.
0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: Friday ki sham hai, everyone is in the relaxing and I think घर पे रहने वाला मूड आज, क्योंकि काफी सड़कें खाली खाली सी दिख रही हैं मुझे. द लॉन्ग वीकेंड फील्स आई गेस. देयर इज अ हल्का फुल्का ट्रैफिक दैट यू माइट फाइंड इफ यू आर ऑन सतवा एंड गोइंग टू विच वहीदी वाला साइड. इसके अलावा आई डोंट सी एनी ट्रैफिक. देयर इज पैची ट्रैफिक एट द मोमेंट, नॉट रियली बैड, लाइक अ 10 टू 12 मिनट डिले अगर आप जा रहे हैं फुरजान की तरफ. इसके अलावा कहीं अटके हैं बता सकते हैं 800-1062 पर.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2. Yeah!

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2 The Beat of Bollywood.
1: गुड इवनिंग, यह बिग थ्रिल मानसी। इमेजिन आपकी गाड़ी में ये गाना, मतलब माहौल बदल जाता है। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि यार गाड़ी तो रेंट करनी है, कहाँ से करें, इट्स सो एक्सपेंसिव। इफ यू थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, देन यू हैव टू चेक आउट selfdrive.ae। दे हैव द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल इन द UAE राइट नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। बिल्कुल सही सुना, 899 दिरहम्स अ मंथ। एट दिस प्राइस पेइंग मोर जस्ट डजंट मेक सेंस। नो ओनरशिप, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, जस्ट पिक योर कार एंड ड्राइव, दैट्स इट। लुक फॉर selfdrive.ae और डाउनलोड द app, self drive your car, your prize, your way.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द UAE कॉल 800-ALFRED-247 Love, lo-fi, and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: तू मुझे चाहे न चाहे ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूं ये मेरे बस में नहीं।

Big 106.2, The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood.